0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: रेडियो दिलबर रेडियो
2: दादी रेडियो दिलबर स्टासु दजरावास.

0: 314-15-13-232.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: उनको सुलाए रखा।
1: ثم بعثناه لما أي الحساب
0: फिर उनको जगह उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों उसकी मकदार किसको।
1: بالحق إنهم فتية بهم وزدناهم هدى
0: हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी।
1: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن

0: अबदा।
1: अगर वो तुम पर दस्तरस पालेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे और उस वक्त तुम कभी फलाह नहीं पाओगे।
0: वो कदा

0: बाज लोग अटकल पिच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना।
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
0: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا।

अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे।

और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा, कहीं उनको सरकशी और कुफर में न फंसा दे।

0: और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
0: और तुमसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।